0: का दुख हुआ कि एक वाइस ईरान की चली गई। इसी तरह हर ईरान
1: दुख, दुख होता है ना इंसान को। हाँ, अच्छा सवाल किया आपने।
0: इन मुज़ाकरात और इस जंग में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह देखते हैं?
1: पाकिस्तान की मरकजियत और महवरियत में ये पहला मौका था, तो ये बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मसाइल को समझते हुए। और पाकिस्तान,
0: पाकिस्तान को वो किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं?
1: इस्तेमाल इस तरह
0: ये
1: से
0: ट्रंप की मैं सोच बता पूछ रहा
1: हूँ। ट्रंप की मैं कह रहा हूँ, ट्रंप की निगाह पाकिस्तान के बारे में वो नहीं है जो पाकिस्तान की निगाह है अमेरिका के बारे में।
0: चाहता क्या है ट्रंप? ट्रंप साहब चाहते क्या हैं हमसे?
1: तो ईरान के अंदर जो एक कमज़ोरी बुनियादी तौर पर रही है वो यही अपनी पर्सनैलिटी शख्सियात की हिफाजत रही है।
0: ईरान की भारत से कुर्बतें रहीं, हमने गवादर बंदरगाह बनाई, ईरान ने चाबहार बंदरगाह बनाकर भारत के हवाले कर दी, लेकिन ये चीज़ें मौजूद तो हैं।
1: ठीक है, अगर ईरान की एटमी ताकत से भी ख़तरा है तो वो इसराइल दुश्मनी की वजह से है। महवर वो है कश्मीर के मसले पर रहबर शहीद का जो मौकफ है, यानी उसूली बातों पर जब आए तो ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: लेकिन अब कि ये मुआयदा करके भी तेल नहीं लेते, वो बगैर मुआयदे के हमारी दुकान पे रोज आता है तेल खरीद के ले जाता है, चूंकि अकल के मुताबिक भी होनी चाहिए, दीन अकल के मुताबिक है, दीन से अकल को हटाएंगे फिर खराबियां शुरू हो जाएंगी। ये कैसा
0: है, खुद किया इस तरह का मातम जिस तरह
1: मैंने किया, मैं अभी भी करता हूँ।
0: और इतने सख्त रिमार्क्स देते हैं आप,
1: जिसके खुले हैं उसके बंधवाए नहीं, जिसके बंधे हुए उसे खुलवाए नहीं।
0: राय का एहतराम है मुझे सर, कि एक तासुर है कि आप ईरान का मॉडल पाकिस्तान में लागू करने के खा हैं। हुनरस्तान रुश्त कम्प्लेक्स है, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, पैरा मेडिकल कॉलेज है, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, आईटी टावर है, माशाल्लाह बहुत कुछ है, ये इतना पैसा कहाँ से आता है? कौन है जो जाली शिया लीडर भी बना रहा है, जाली शिया सिलसिले भी बना रहा है? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अमरीका इसराइल की ईरान पर बिला जवाज मुसल्लत करदा जंग जो 39 दिन जारी रही, एक नंगी जहरियत, एक वहशतो बरबरियत जो 39 दिन जारी रही, और फिर उसमें आया एक तारीख साज मोड़ और हुए इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। कहा जाता है कि 1979 के बाद पहली दफ़ा ईरान और अमरीका इतनी हाई लेवल पर आमने सामने बैठे। बहुत सारी बातों पर इत्तफाक हुआ, गो के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और बेनतीजा रहने थे, ज़ाहिर है एक बैठक में, एक मजलिस में, एक मुज़ाकराती जो टेबल सजा उसमें डेफिनेटली कोई ब्रेक थ्रू बड़ा कोई तवक्को नहीं थी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिन पर इत्तफाक हुआ और बहुत सारी बातें हैं जिन पर अभी इत्तफाक होना बाकी है। अब सूरत हाल ये है कि जंग बंदी है 2 हफ्ते के लिए, लेकिन जब दुश्मन नेतन्याहू और ट्रंप जैसा हो तो अगले लम्हे का कोई पता नहीं होता। पहले भी 2 बार मुज़ाकरात हुए, ईरान तकरीबन सब कुछ मान चुका था तो मुज़ाकरात छोड़कर उन्होंने हमला कर दिया ईरान पर। इस बार फिर मुज़ाकरात, और अब सुना जा रहा है कि दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं, और इस वक्त भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि जंग बंदी रहे, सूरत हाल कंट्रोल में रहे और चीज़ें ख़राब ना हों। तुर्किया भी इसमें शामिल है, इसमें मिस्र भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है। 39 रोज़ा जंग, उसके बाद मुज़ाकरात और आगे आने वाला मंज़र, इन सब पर तो बात करनी है, लेकिन कुछ और भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी है। और आज मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं लाहौर में हूँ और जामिया उर्वतुल वुस्का जो मदरसा है उसमें हूँ, और मेरे सामने बैठे हैं मारूफ आलम दीन, स्कॉलर, मुफक्कर। और इनका जो सबसे मुझे अच्छी बात लगती है कि ये बहुत सारे झगड़ों से, बहुत सारे तफरकों से, बहुत सारी चीज़ों से साइड पर वो काम कर रहे हैं जो कभी मुस्लिम उम्मा का शुआर था, जिसमें मुस्लिम उम्मा ने एक लीड किया तालीम। तो जामिया उर्वतुल वुस्का के प्रिंसिपल, मुदीर आला, मोतमिम, मारूफ आलम दीन, स्कॉलर, मुफक्कर आगा सैयद जवाद नकवी साहब आज मेरे साथ हैं, और इनसे बहुत सारे सवालात करने हैं। मेरा बड़ा दिल था कि मैं बहुत सारे मुतनाज़ सवाल भी करूं जो एक आलम दीन से मैं करता हूं, अपनी रहनुमाई के लिए भी, लोगों की रहनुमाई के लिए भी, लेकिन चूंकि वक्त एक दूसरा चल रहा है तो थोड़ा सा جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ باتیں

0: आपने इसी मार्के में जो जारी है
1: जी
0: अमेरिका ईरान और इसराइल ईरान जंग के दौरान, और आपने उसको जैसा यहाँ फरमाया कि खुली नंगी जारहियत है, आपने अपने प्रोग्रामों में भी इसी तरह खुल के बात की है। और ये बनता है कि पाकिस्तान में वैसे तो तमाम पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक पेज पर है, लेकिन उसमें जुरत करके आगे फ्रंट पे आके बोलने वाले लोगों में से आप सर फहरिस्त हैं, और आपके चंद और साथी जिनके हम क़दरदान हैं, और आपको फिर जामे और वतुल वस्का में आने पर शुक्रिया भी अदा करते हैं, खुश आमदेद भी कहते हैं।
1: बहुत शुक्रिया। और सर, पहली जो जंग थी ना 12 रोज़ा, उसमें मैं दूसरी साइड पे खड़ा था। मेरा ख़्याल था कि ईरान को बैठ जाना चाहिए, चीज़ें ईरान को सेटल करनी चाहिए, 40-45 साल की पाबंदियाँ हैं, अब इनकलाब इस्लामी इनकलाब की बहुत कीमत भुगत ली लोगों ने, लोग ईरान के लोग भी चाहते हैं कि वो दुनिया से मिलें। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर खुदा न खास्ता ईरान सरेंडर कर गया तो ये तो इसका मतलब है मुस्लिम उम्मा के आखिरी दीवार गिर जाएगी। और फिर मुझे लगा कि ये ईरान जो है इसका खड़ा रहना कितना ज़रूरी है, और फिर पता लगा कि कौन गलत तरीके पर है और कौन किस एजेंडे पर है। तो उस वक्त फिर मैंने और पढ़ा, और तो फिर मुझे मैंने सोचा कि एक है जो मैदान में जिहाद है, एक है जो ज़ुबान से, एक है जो दिल से बुरा समझना। तो मेरा ख्याल है, मैंने कहा कि मैं मुझे सेकंड पे तो आना चाहिए। और ये मेरे अंदर की ये एक अभी तक मैं ज़िंदगी भर ईरान नहीं गया, कोई अभी कोई ये नहीं है कि मैं कोई मिला हूँ किसी से, लेकिन मुझे उन लोगों से मोहब्बत हो गई है कि जिस तरह वो खड़े हुए, जिस तरह उन्होंने अपने वतन के लिए जानें कुर्बान की। और ख़ास तौर पर आखिरी दिन जब ट्रंप ने कहा कि मैं तहजीब मिटा दूंगा, बल्कि अब तो वो कह चुका है कि ये तो मैंने दबाव के लिए कहा था, तो लेकिन लोग लाखों की तादाद में निकले, बिजली घरों पर आकर बैठ गए और पुलों पर खड़े हो गए, बच्चे बूढ़े ख़वातीन, ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी तबाह करें, हम भी शहीद होने के लिए तैयार। तो कमाल खड़ा रहा, डटा रहा ईरान। तो सर, हम मुज़ाकरात से ही बात शुरू कर लेते हैं। इन मुज़ाकरात और इस जंग में, पहले इस जंग में और फिर इन मुज़ाकरात में, आप पाकिस्तान के किरदार को किस तरह देखते हैं?
0: पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात के दौरान और मुज़ाकरात की सूरत में जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और बैरूनी और सारी चीज़ों को अगर नज़र में रखें तो ये बेहतरीन और आइडियल किरदार ये था पाकिस्तान का जो इन्होंने इस वक्त इख्तियार किया है। हर चंद उसमें भी ज़ाहिर है, अब जो आगाह लोग हैं उन्हें पता है कि ये पाकिस्तान की कोशिश और काविश, इसके पीछे और कौन से लोग थे जिन्होंने मिलकर ये माहौल बनाया है। बहरकैफ सारी दुनिया ने इसको सराहा है और इससे पाकिस्तान का बहुत वक़ार बढ़ा है, पाकिस्तान का सियासी कद और सफारती कद बहुत बड़ा है। और हर चंद कहा जाता है कि पाकिस्तान पहले भी इस तरह के मुज़ाकरात में शरीक रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मरकज़ियत और महवरियत में ये पहला मौका था, और पाकिस्तान ने जो कोशिश की है वो काबिले तारीफ़ है, और ईरानी आवाम भी, ईरानी क़यादत भी, ईरानी सफारतकार भी पाकिस्तान के कदरदान हैं। मुज़ाकरात से पहले ही उन्होंने नारा लगा दिया था, पाकिस्तान जिंदाबाद और तशक्कुर पाकिस्तान। और पाकिस्तान मजमूई तौर पर अगर हम देखें, इनकलाब इस्लामी के बाद ईरान के दो दौर हैं, इनकलाब से पहले और इनकलाब के बाद। इनकलाब से पहले पाकिस्तान और ईरान के भी बड़े आइडियल ताल्लुकात थे, दोस्ताना ताल्लुकात थे, ईरानी शहनशाह के साथ वो आए भी यहाँ पर और उनके नाम पर सड़कें भी रखी गईं। लेकिन अब चूँकि इनकलाबी ईरान से हमारा पाला है, तो गुज़श्ता जो तकरीबन 47 साल है तो इनकलाब के बाद का दौर है, इसमें भी पाकिस्तान और ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। रहबर शहीद खुसूसन पाकिस्तान के बहुत कदरदान थे। रहबर जो मौजूदा रहबर हैं सैयद मुश्तबा खामनेई, इन्होंने अपने नौरोज़ के पैगाम में, नौरोज़ ईरानियों के लिए बहुत अलग थलग अहमियत की चीज़ होती है, तो उसके पैगाम में उन्होंने صرف ایک ہی ملک کی تعریف اور بات کی ہے اور وہ پاکستان ہے، اور انہوں نے اس میں

0: अभी नहीं समझते
1: और आप समझते हैं कि सर इसराइल के का जो एजेंडा है उसमें अगर खुदा ना खास्ता ईरान सरेंडर कर जाता है तो ये आखिरी हदफ नहीं है, आगे भी होंगे
0: 100% बिल्कुल 100% ऐसे वो पाकिस्तान तक आएंगे और पाकिस्तान को इस गलतफहमी से बाहर आना चाहिए।
1: अच्छा सर आप क्या नहीं समझते कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत ने एक मौका मुस्लिम उम्मा को दिया शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी से बालातर होकर सोचने और कुछ करने का?
0: बिल्कुल ऐसा ही है और ये तारीखी है, सदियों बाद ये मौका उम्मत मुस्लिमा के हाथ आया है और ये उस रहबर शहीद की शहादत की वजह से ही आया है। इनकी आँखें खुली हैं, इनके पट्टियाँ उतरी हैं दिमागों से और दिमाग खुले हैं। जिस जाविये से ये मसाइल को देखते थे, फ़िरकावारियत और फलां, और जो गलत फहमियाँ पैदा की गई थी ईरान के बारे में, क़यादत के बारे में, आखिर इस शहादत ने वो धो डाला। और अभी जो उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत है उनकी सोच की जहत ठीक हो गई है, दुरुस्त समत में सोचना शुरू किया है, लेकिन वो सोच अभी पुख्ता नहीं हुई है, वो सोच अभी लाहे अमल में तब्दील नहीं हुई है, वो सोच किसी आज़म में नहीं बदली अभी। लेकिन ये भी बड़ी गनीमत है कि ये सोच पैदा हुई है। अब यहाँ पर क़यादत का किरदार है कि इस बने हुए रुझान को कोई डायरेक्शन दें और उसको किसी जगह पर ले आएँ और उसको एक करें। जो खामोशी है क़यादत की, ये नुकसानदेह है मेरी नज़र में, ये मौका ज़ाया करने के बराबर है और ये नहीं करना चाहिए इनको ज़ाया।
1: अच्छा सर मैं तो समझता हूँ कि 39 दिनों का जो फाते है जंग का वो ईरान है, ना रिजीम चेंज हुआ, ना सरेंडर हुआ, ना बगावत हुई, ईरान ने इस जंग को अपनी पहले खित्ते की जंग बनाया, फिर दुनिया की जंग बनाया, और जो रिजीम चेंज करने आए थे गैर मशरू सरेंडर चाहते थे वो अब नए हुरमस पे टिके हुए हैं कि ये खोल दें। लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि जो मुल्क अपने सुप्रीम लीडर और अपनी क़ियादत को नहीं बचा सका उसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो फाते हैं?
0: ठीक है, ये सोच माकूल है और सवाल भी बनता है कि सिक्योरिटी के मसाइल ईरान में शुरू से रहे हैं, इनकलाब के पहले दिन से अगर हम देखें तो ईरान के अंदर जो एक कमज़ोरी बुनियादी तौर पर रही है वो यही अपनी पर्सनैलिटी शख्सियात की हिफाजत रही है। शुरू दिन से, इनकलाब के दूसरे दिन से इनकलाबी शख्सियात का कत्ल और टेरर शुरू हो गया था। बड़ी बड़ी शहीद बहिश्ती जो मरकज़ थे इनकलाब के शहीद हो गए, शहीद मुताहरी शहीद हो गए, मोहम्मद अली रजाई सदर थे शहीद हो गए, जवाद बाहनर प्राइम मिनिस्टर थे वो शहीद हो गए, और इसी तरह एक एक करके हमने देखा कि ये कमज़ोरी शुरू में रही थी और इसकी तरफ काफ़ी, ये वो दिन थे जब हम वहीं पढ़ते थे और मसाइल को नज़दीक से देखते थे, मतबूआत में उनके अखबारों में या मीडिया पे देखते थे कि बाज़ लोगों की इस तरफ हसासियत थी, तवज्जो थी कि इस शोबे में हम कमज़ोर हैं। और इस कमज़ोरी की बड़ी वजह ये थी कि ईरान में सिक्योरिटी की जो कमज़ोरी है वो ये कि जिसको ईरान की इस्तलाह में कहा जाता है ना नफूजी जासूसी, जो दरअंदाजी वाले जासूस हैं, एक तो वो जासूस है ना जो सिर्फ मालूमात जमा करता है, इतलात जमा करके देता है अपने मुल्क को या अपने कंपनी को, एक वो जासूस होता है जो दूसरे सिस्टम के अंदर जाके वायरस की तरह घुस जाता है। यानी ये बाज़ सिक्योरिटी माहिरीन की ताबीर थी कि कुछ जासूस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की हैसियत रखते हैं, जो एक दूसरे सिस्टम में जाकर उसकी मालूमात ले लेते हैं और उसे कमज़ोर करते हैं, लेकिन कुछ जासूस होते हैं वायरस की तरह होते हैं। और उन्होंने ये समझाया कि बैक्टीरिया और वायरस में ये फ़र्क है कि बैक्टीरिया जाके जिस्म के या दूसरे जो अज़ा हैं उनकी तवानाई इस्तेमाल करता है और उसको नाकारा कर देता है, लेकिन वायरस जहाँ घुसता है ये उसका कंट्रोल संभाल लेता है। उस इंसानी जिस्म में जब वायरस जाता है तो ये जिस्म का या उस हिस्से का कंट्रोल अपने पास ले लेता है। तो ये उन जासूसों को, नफूजियों को, दरअंदाजी करने वालों को ये समझते थे। ये बड़ी कमज़ोरी शुरू से अभी तक रही है और ईरान ने इसके हाथों बहुत नुकसान उठाया। यानी शायद इतनी टॉप क्लास क़यादत दुनिया भर में सारे मुल्कों की मिला के नहीं शहीद हुई हुई जितनी ईरान के अंदर हुई है। तो ये तो अभी भी है और रहबर शहीद ने सबसे पहले इसको नुमाया करके बताया, ख़तरे नफूज। अगर आप ये जुमला लिखें नेट के ऊपर रहबर शहीद की

0: तो वो एक मामूल बना लें आप उसको।
1: जी सर, तो वो ठीक है?
0: नहीं, अब मामूल नहीं बनाए उसको, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं।
1: सर क्या फ़र्क पड़ता है?
0: लेकिन अब ये शहादत अमीरुल मोमिनीन, विलायत अमीरुल मोमिनीन, आज़ान व इकामत में शिया पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, अवाम भी पढ़ते हैं, और इस पर ताकीद भी करते हैं कि ये पढ़ना ठीक है।
1: आप नहीं समझते?
0: दरए नियाल इसको जुज नहीं समझ,
1: लेकिन आप नहीं समझते कि ये बिद्दत है शामिल की गई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
0: अगर इसको जोज़े अज़ान कहेंगे तो फिर कह सकते हैं, लेकिन जोज़ नहीं है ये
1: सर। ये
0: यानी अगर कोई नहीं पढ़ता तो यू नहीं कहते कि अज़ान नाकिस है उसकी।
1: हाँ नहीं, लेकिन अगर ये अज़ान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जो हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, उनके दौर में तो ये शामिल नहीं थी ना?
0: नहीं थी ये।
1: ठीक, अच्छा दूसरा सर, ये जो कलमा है, कलमा आप लोगों का क्या है?
0: कलमा तो बहुत सारे सुन्नी उलमा ने भी वजाहत की है कि कलमा नाम की कोई ऐसी दीनी सनद या नस या ऐसी नहीं है, ये हमारा अपना दीनी तालीमात से बनाया हुआ एक उन्वान है,
1: ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
0: यानी इस तरह की कोई चीज़ दीन के अंदर नहीं पेश की गई कि ये कलमा है, ये बुनियाद है, ये करो।
1: यानी ये दीन
0: शहादत है, असल जो चीज़ है वो कलमा नहीं, शहादत है।
1: जी सर,
0: कि अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की शहादत दे,
1: अशहद
0: व अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, असल ये है।
1: और आपका आगे क्या है?
0: और वो शहादतें नहीं, लेकिन शिया साथ अशहद अन्न अली वलीउल्लाह भी कहते हैं। अब ज़ाहिर है कि ये शहादत विलायत अमीरुल मोमिनीन, ये ना उस तरह से जैसे आपने कहा ना कि कलमा कोई अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि ये पहले कलमा पढ़ो तो मुसलमान होंगे, या रसूलल्लाह ने कहा पहले कलमा पढ़ो, शहादत अदा करवाते थे कि पहले गवाही दो मैं अल्लाह की वहदानियत को मानता हूँ, और गवाही दो कि रसूलल्लाह अल्लाह के नबी और ख़ातमुन्नबीयीन ने, ये गवाही दो।
1: और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था?
0: नबी अलैहिस्सलाम के दौर में था, पहले बाद के दौर में भी था कि गवाही अल्लाह की वहदानियत की और रसूलुल्लाह की।
1: और उसके बाद ये था कि अली वलीउल्लाह या खलीफा ये था?
0: नहीं, ये उस मकसद के लिए नहीं है जो आप यूँ नहीं कहें कि ये शहादत वहदानियत खुदा और शहादत रसालत।
1: अभी आपने सर एक कहा कि जो अस्सलातो खैरु मिनन नौम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं था,
0: नहीं।
1: तो शिया नहीं पढ़ते, ये खलीफा अव्वल या खलीफा दोम के दौर में था,
0: तो जुज़ नहीं था,
1: जुज़ नहीं था। तो आप अजान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी उसमें इजाफा, जो वो जो कलमा उसमें इजाफा,
0: नहीं इजाफा
1: या उसमें शामिल किया गया कुछ?
0: मसलन एक चीज है जो आप किसी ढांचे का या किसी स्ट्रक्चर के अंदर उसको शामिल कर देते हैं, ये इजाफा है
1: सर मुझे आप,
0: लेकिन
1: मुझे
0: एक चीज़ है जो इजाफा नहीं
1: आप
0: है।
1: आप अस्सलात व खैरु मिनन नौम नहीं पढ़ते अपनी अजान में, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, तो आप कलमे में और अजान में और बाकी चीज़ों में क्यों चीज़ें अपने आपने ये सम
0: देखें इस तरह अगर आप मजाहिब को आपस में मुवाजना करें ना, मसलन सुन्नी मजाहिब को फ़िक़े हनफी को फ़िक़े शाफ़ी से, फ़िक़े शाफ़ी को फ़िक़े मालिकी से, मालिकी से, तो ये सारे फ़र्क वहाँ होंगे कि इनमें ये है इसमें ये नहीं,
1: लेकिन
0: है
1: अजान
0: जैसे
1: तो
0: आमीन कहना नमाज के बाद, रफ़ या दैन करना, फ़लाँ करना, ये हैं आप कह सकते हैं इसको फ़ुकहाती या इज्तहादी मसाइल हैं, ये इजाफात या बिदआत में नहीं होते।
1: तो
0: इज्तहादी मौजूआत हैं, और इज्तहादी मौजूआत में तमाम आइम्मा का इत्तफाक है, आइम्मा अरबा अहल सुन्नत का, कि अगर एक मज़हब इज्तहादी नज़रिया बनाता है तो दूसरा उसको ये नहीं कह सकता कि ये दीन से बाहर है या ये बिदअत है या फलाह है। लिहाजा अमीन कहें आप नमाज के अंदर तो वो फिर भी मुसलमान रहता है,
1: हाँ, सर अमीन
0: नहीं कहता तो भी मुसलमान रहता
1: सर,
0: है।
1: दिल में आप कहें आमीन ठीक, बावाज़े बुलंद कहें आमीन ठीक, लेकिन अब मैं आमीन
0: और ना कहें, ना दिल में कहें ना बाहर कहें तो भी कोई फर्क नहीं,
1: लेकिन
0: पड़ता।
1: मैं अगर साथ लगा लूँ,
0: ये इज्तहादी मसाइल है,
1: हाँ, लेकिन
0: इज्तहादी मसाइल में गुंजाइश है
1: सर, मैं अगर साथ लगा लूँ आमीन अलीम वलीउल्लाह,
0: जो ज़रूरी कोरम है ना दीन का वो अगर पूरा कर रहे हैं आप,
1: उसके बाद कुछ भी साथ लगा,
0: फिर जो नहीं, फिर ये इसके पीछे एक इज्तहादी इस्तदलाल मौजूद है।
1: अच्छा सर,
0: उसको आपको कबूल करना होगा, आप ना करें आपको

0: तो हमारे पास चूंकि हमारा वो तर्ज़ ज़िंदगी ऐसा है कि ज़्यादा ख़र्चे वाला है नहीं है, लेकिन फिर भी होता है। ज़ाहिर अभी मेडिसन है, एक मैं भी लेता हूँ, मेरी अहलिया भी लेती है, एक बड़ा ख़र्चा हमारा, और घरेलू किचन का ख़र्चा भी है, इस तरह छोटे छोटे
1: अहलिया
0: करते
1: कभी
0: रहते हैं।
1: कहती नहीं कि मुझे किस चक्कर में डाल दिया?
0: नहीं, वो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बड़ा साथ दिया है और बड़ी सबूरी से उन्होंने काम लिया।
1: तो
0: और
1: खाना पीना किधर
0: बहुत
1: से सर?
0: सारे अभी जो ख़वातीन के मदरसे में भी, वो उनकी भी खदमात हैं, वो एक
1: नहीं मैं, अच्छा तो खाना पीना कैसे किधर
0: खाना
1: से?
0: पीना ऐसे है कि हमारे कुछ दोस्तान हैं, कुछ तो हैं रेगुलर, हमें हदिया कह लें, कोई एक आध फैमिली ऐसी है जो अपने अकीदत के ज़रिए या जिसके ज़रिए या जिनको हमारे हालात थोड़े पता हैं, मैं यूँ कहूँगा कि वो कुछ हमारी वो तावन कर
1: बैंक
0: देते हैं।
1: अकाउंट है सर आपका?
0: मेरा बैंक अकाउंट है लेकिन उसमें मेरा पैसा नहीं है, उसमें सारा मदरसे का है,
1: अच्छा,
0: मेरा एक रुपया भी उसमें
1: आपके अपना कोई कोई बैंक अकाउंट
0: नहीं। मेरे नाम का बैंक अकाउंट है लेकिन उसके अंदर जो रकम है वो सारी मदरसे की है, चूँकि मदरसे का अकाउंट नहीं खोल रहे थे, बैंक पॉलिसी ऐसी थी, और पर्सनल अकाउंट ही खोलना पड़ा। अब लोगों को हम जब बताते थे कि मसलन लोग जब तआवुन करना चाहते हैं कि हम आप मदरसे का तआवुन करते हैं, तो हम कोई पर्सनल अकाउंट दें तो वो उन्हें एतमाद नहीं होता कि ये किसके अकाउंट में जा रहा है। मदरसे का अकाउंट खोलने जाते थे तो बैंक वाले खोलते नहीं थे, तो इसलिए मुझे पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ा, और वो उसमें तमाम जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी मदरसे की, उसमें मेरा ज़ाती पैसा कोई भी नहीं।
1: सर, अल्लाह ताला इस मदरसे को और वुसअत दे और ज़्यादा लोग इसमें पढ़ें और दीन का असल शऊर जो है वो हासिल करें। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, हिम्मत दे और हौसला दे जो आप काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो मुझे पसंद है कि जो मज़हबी रवादारी है, जो जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला करे आप करते रहें। मुझे आपसे मिलकर सर बहुत खुशी हुई।
0: शुक्रिया बहुत आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखे,
1: बहुत
0: सलामत रखे, और
1: शुक्रिया।
0: जो आप में अल्लाह ने क्वालिटी रखी है एक हक बयान करने की, और साथ ही मैं ये कहूँगा कि मुतनाज़ बातों के लिए ना लोगों को उभारें, उकसाएं, ना करवाएं, क्योंकि मुतनाज़ बातों से आगे कोई रहनुमाई नहीं फैलती, उल्टा और दिल आज़ारी होती है। तो आपको अल्लाह ने बहुत क्वालिटी दी है, और जिस तरह ये ईरान अमेरिका जंग में आपने हक गोई की है, बस हर मसले में इसी तरह हक गोई करते रहें, तो मेरी नज़र में सहाफ़ी वही रावी हैं दीन के हक़ बयान करने के। अगर वही अदालत व वसाकत उनके अंदर आ जाए तो मेरे ख्याल में ये दुनिया बदल सकते हैं इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया सर,
0: जज़ाकल्लाह,
1: जज़ाकल्लाह,
0: बहुत बहुत
1: जज़ाकल्लाह,
0: शुक्रिया।
1: जज़ाकल्लाह।
2: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the vanes of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.
3: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group partner with a logistics company you can trust.